दोस्तों 9:50 का समय हो चुका है। फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून कर रहे 99.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आप कर रहे दोस्त रेसी मीना। दोस्तों हमारी ऑनलाइन कॉलिंग लाइन ऑन है, आप हमें कॉल करके आपकी फरमाइशों को दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर, एक बार जरूर आप लिखें 6378024475। दोस्तों नंबर पुनः लिखें 6378024475। जल्दी हमें कॉल करें।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग।

0: गुड मॉर्निंग सुप्रभातम नमस्कार गंगापुर सिटी में आपका रेडियो दोस्त रेसे मिला। दोस्तों फिलहाल आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो ओडीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर, मैं आपके साथ रेडियो दोस्त रेसे मिला। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और फिलहाल आप पेश करने जा रहे हैं आपका मन पसंद फेवरेट कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: 89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस,
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे,
3: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: हर
4: हेलो,
5: गुड मॉर्निंग सर।
4: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं।
5: सर सवाई माधोपुर से मोनिका मीणा बोल रही हूँ और गाना है सर रुला के वो चल दिए जो एक दिन हंसाने आए थे।
4: बिल्कुल सुना रहे मैम आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना, रेडियो डीएस में कॉल किया, धन्यवाद।
5: शुक्रिया सर।
1: रेडियो डीएस, यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस,
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे,
3: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: शहनाज
0: शहनाज जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: संजय कॉलोनी।
0: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: दिल बार दिल बार
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का गाना।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: सर मेरा नाम पायल जगह।
1: पायल जगह जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं पायल जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: नजर आके तीर चला गई हीर।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश पे बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस में कुल किया, धन्यवाद।
0: थैंक यू सर।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: सचिन जी। सर
1: सचिन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: गंगा पश्चिमी से बात कर रहे हैं।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: यार
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर आपका?
0: दीपक रेगर।
1: दीपक रेगर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: अरनिया।
1: अरनिया गांव से। बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: दिल मेरा तोड़ के।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का ये सॉन्ग।

0: हेलो
1: हेलो नमस्ते सर
0: जी। नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
1: चौधरी निवेदन कर रहा हूँ महावीर जी से।
0: चौधरी जी, महावीर जी से बताएं चौधरी जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: गाना है सर तू रूप की रानी।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सॉन्ग।
1: थैंक यू।

0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी। हेलो जी, नाम बताए।
1: आरबी गुजर।
0: आरबी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पता है मैम कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैं अक्सर तुम्हें
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पे बैठ।

0: हेलो
1: जी। हाँ हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: मुरारी लाल शर्मा है मेरा नाम।
0: मुरारी लाल शर्मा जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं गंगापुर से कर रहा हूँ सर बात।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। ये सर आपकी फरमाइश पूरी होने के बाद ना पूरा गाना सुना देना।
0: बिल्कुल पूरा ही सुनाएंगे सर आपको।
1: हाँ लाइक।

0: ठंडी राम गुजर बोल रहा हूँ, गाँव गुजर जाते।
1: ठंडी राम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: सर गाने के बोल रहे हैं, कितना बता लगाया इंसान देख।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश का गाना।
0: ओके सर, थैंक यू सर।

0: हेलो।
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: आर्यन मीना।
0: आर्यन मीना जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मीना पृथ्वी।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: काले रंग की गाड़ी है।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी सुना है इसका गाना।
2: रामा रे मारे।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6।
3: हेलो जी, नाम बताएं।
4: मीना।
3: कहाँ से बात कर रहे हैं मीना जी?
4: मैं यहाँ बात कर रहा हूँ गंगापुर सैनी नगर से।
3: 10 मिनट के बीच का?
4: हाँ सर, ठीक है। परंपरा ठाकुर का चला दो, लाभ समझाऊँ?
3: बिल्कुल सर, सुना रहे हैं।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी जनहित में जारी रेडियो दोस्त ऋषि मीना की तरफ से डीएस साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी साइबर ठगी से बचें, सावधान रहें। नमस्कार दोस्तों, आजकल साइबर ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। OTP पूछना, फर्जी बैंक कॉल, KYC अपडेट के नाम पर लिंक भेजना, QR कोड स्कैन करवाना, लॉटरी और इनाम का लालच देना, फेक जॉब और ऑनलाइन निवेश के झांसे से सोशल मीडिया हैकिंग, व्हाट्सएप पर फर्जी रिश्तेदार बनकर पैसे मांगना, ये सभी साइबर ठगी के तरीके हैं। याद रखें, अपना OTP, ATM पिन, बैंक डिटेल और पासवर्ड किसी को ना बताएं। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। कोई भी संदिग्ध कॉल आए तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 930 पर शिकायत करें। जागरूक बने, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी, रेडियो दोस्त इशी मीना एवं डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी।
2: हेलो
3: जी, नाम बताएं।
2: कार्तिक जैन।
3: कार्तिक जैन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: गंगापुर सिटी।
3: बताएं जैन साहब, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
2: रशिया नंदा।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं जैन साहब, आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
3: हेलो
4: सर नमस्ते
3: जी नमस्ते नाम बताएं सर आपका
4: सज्जाद खान पुराने निजामी
3: सज्जाद जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप
4: गाना एक कवाली
3: बताएं सर कौन सी कवाली
4: इमाम हुसैन
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर इमाम हुसैन जी की कवाली आपकी फरमाइश
0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.

0: हाँ?
1: क्या नाम है?
0: अंकित।
1: अंकित जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: मैं क्या पूछूं?
1: अंकित जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: शरारत सॉन्ग।
1: शरारत सॉन्ग?
0: एलवी यादव।
1: एलवी यादव जी का सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
3: हेलो जी, नाम बताएं।
4: दीपिका
3: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
4: दुर्गापुर से।
3: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
4: शाम शाम करके दुनिया बराबरी से हो रही।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस में कॉल किया था।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी नमस्ते।
1: हाँ भैया, योगेश जांगड़े पे मैं तेरा छत्तीसगढ़ से।
0: योगेश जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज रेडियो डीएस से।
1: मोहब्बतें से सुनवा देंगे कोई सा भी।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश के बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए।

0: जी नाम बताएं।
1: चीनू सैनी।
0: चीनू सैनी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: लाल सूट से।
0: लाल सूट से बताएं चीनू जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? कौन सा गाना सुनना चाहते हैं सर?
1: गुलाबी गुलाबी
0: गुलाबी सरारा। सर आवाज कट के आ रही है आपकी, गुलाबी सरारा सॉन्ग सुनना चाहते हैं?
1: हाँ।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश, बेहतरीन सा सॉन्ग।

दोस्तों वक्त हो चुका है 11:17 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का, मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजी पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6।

0: नमस्कार जी।
1: जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
0: रतनलाल बोल रहा हूँ, मऊ कला
1: से। रतनलाल जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप।
0: सुना था गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का।
2: को ठुकराया तो सब

0: हेलो,
1: गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग सर, नाम बताएं आपका?
1: जम्मू से केशव शर्मा जी।
0: कैसे हो शर्मा जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आज सुना दीजिए मुझे अपमान की आग फिल्म का गाना है, दिया दिया दिल दिया।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश।
1: साथ में कोई साथी हैं
0: जी?
1: सारे दोस्त हैं जी। विजय पांडे जी हैं यूपी से, पूर्ण वर्मा जी हैं राजस्थान से, और शिमला से हैं जी गोल्डी जी, जी और साथ में मैडम सुषमा शर्मा भाई साहब।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आप सभी का ये प्यारा सा सॉन्ग रेडियो डीएस में, खुल के धन्यवाद।
2: 89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस,
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी जनहित में जारी रेडियो दोस्त ऋषि मीना की तरफ से डीएस साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। साइबर ठगी से बचें, सावधान रहें। नमस्कार दोस्तों, आजकल साइबर ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ओटीपी पूछना, फर्जी बैंक कॉल, केवाईसी अपडेट के नाम पर लिंक भेजना, क्यूआर कोड स्कैन करवाना, लॉटरी और इनाम का लालच देना, फेक जॉब और ऑनलाइन निवेश के झांसे से, सोशल मीडिया हैकिंग, व्हाट्सएप पर फर्जी रिश्तेदार बनकर पैसे मांगना, ये सभी साइबर ठगी के तरीके हैं। याद रखें, अपना ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक डिटेल और पासवर्ड किसी को ना बताएं। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। कोई भी संदिग्ध कॉल आए तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 930 पर शिकायत करें। जागरूक बने, सुरक्षित रहे।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: नाम मेरा सुनील कुमार।
0: सुनील कुमार जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: हम हीरापुर से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मासूम शर्मा का।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश पे मासूम शर्मा जी का गाना रेडियो डीएस में। कुल के धन्यवाद।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए।
3: हेलो हेलो
4: हेलो, नमस्ते सर।
3: जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
4: पलक।
3: पलक जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: गंगापुर सिटी।
3: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? है जी
4: मुमताज सॉन्ग।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं आपको मुमताज सॉन्ग।

0: जन्मा तक काळजे महाराज करेगी मैं शाहजहां
1: हेलो
2: जी नाम बताएं
1: निकिता
2: निकिता जी कहां से बात कर रहे हैं
1: रेलवे स्टेशन
2: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
1: लव मैरिज करेंगे कौन
2: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश कैसे

0: रखिए।
1: जी नाम बताएं।
2: उमा शंकर पटेल बोल रहा हूँ, पिपरिया सागर मध्य प्रदेश से।
1: पिपरिया सागर मध्य प्रदेश से उमा शंकर जी, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है सर।
1: बताएं सर, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
2: जी सर, आंख लड़ती है तो लड़ने दो।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: मांगे पानी, मुझे करना है प्यार मेरे दिल में करार।
1: बस
0: मुझे करना है प्यार मेरे दिल में।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
2: कोमल।
1: कोमल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर से।
1: बताएं कोमल जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: मैनु इश्क दा लगी यारो।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं आपको आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस में। कुल किया, धन्यवाद।

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: अनिल शर्मा।
0: अनिल शर्मा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गाना
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आज छोड़ के चल परी।
0: आज छोड़ के जल परी।
1: हाँ
0: सुना रहे हैं सर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी जनहित में जारी रेडियो दोस्त ऋषि मीना की तरफ से डीएस साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी साइबर ठगी से बचें, सावधान रहें। नमस्कार दोस्तों, आजकल साइबर ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ओटीपी पूछना, फर्जी बैंक कॉल, केवाईसी अपडेट के नाम पर लिंक भेजना, क्यूआर कोड स्कैन करवाना, लॉटरी और इनाम का लालच देना, फेक जॉब और ऑनलाइन निवेश के झांसे से सोशल मीडिया हैकिंग, व्हाट्सएप पर फर्जी रिश्तेदार बनकर पैसे मांगना, ये सभी साइबर ठगी के तरीके हैं। याद रखें, अपना ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक डिटेल और पासवर्ड किसी को ना बताएं। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। कोई भी संदिग्ध कॉल आए तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 930 पर शिकायत करें। जागरूक बने, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी, रेडियो दोस्त इशी मीना एवं डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी
0: 89.6 पे रेडियो डीएस। यहाँ
4: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, एफसीआई गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: मनीष
1: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: गुंडे भी फाइनेंसर के।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: नमस्कार सर।
1: जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
0: सर मेरा अनिल कुमार सोनी।
1: सोनी जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: सर मैं गंगापुर सिटी हाडोचा कॉलोनी।
1: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: पूजा एंड पटोला।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश है सोनी।

0: हेलो
1: हेलो हेलो
0: हाँ जी, नाम बताएं सर आपका।
1: नाम बता। नाम सत्यनारायण।
0: सत्यनारायण जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: गाना
0: जी,
1: गानों एक भजन सुना दो तुम तो कोई सो।
0: ठीक है सर, सुना रहे हैं आप।

0: जी नाम बताएं।
1: हेलो।
0: हाँ जी नाम बताओ सर।
1: सिंगापुर से।
0: गौरव सैनी जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मंद मंद बोला जिया।
0: बिल्कुल
1: ये वाला गाना चला देना।
0: बिल्कुल चला देंगे सर, आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: से बात कर रहे हैं? बताए कौन सुनना चाहते हैं आप?
1: काली गाड़ी।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।
2: 89.6 पे रेडियो डीएस
3: सुनते रहिए, दिल से दिल तक। 89.6 डीएस एफएम पे
4: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक। 89.6 डीएस एफएम पे
5: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
6: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी जनहित में जारी रेडियो दोस्त ऋषि मीना की तरफ से डीएस साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी साइबर ठगी से बचें, सावधान रहें। नमस्कार दोस्तों, आजकल साइबर ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ओटीपी पूछना, फर्जी बैंक कॉल, केवाईसी अपडेट के नाम पर लिंक भेजना, क्यूआर कोड स्कैन करवाना, लॉटरी और इनाम का लालच देना, फेक जॉब और ऑनलाइन निवेश के झांसे से सोशल मीडिया हैकिंग, व्हाट्सएप पर फर्जी रिश्तेदार बनकर पैसे मांगना, ये सभी साइबर ठगी के तरीके हैं। याद रखें, अपना ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक डिटेल और पासवर्ड किसी को ना बताएं। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। कोई भी संदिग्ध कॉल आए तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 930 पर शिकायत करें। जागरूक बने, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी, रेडियो दोस्त ईशी मीना एवं डीएस साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी।
5: 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का।
7: रामा रे बारे

0: हेलो
1: हेलो सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नाम बताएं सर आपका?
1: जसप्रीत सिंह।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: हिंदू से शान बदली।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम मनमोहन सिंह।
1: कहाँ से बात कर रहे सर?
0: जंगलापुर की।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: फोकलेस।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते
2: तेरे बिना तो कुछ ना रे।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6।

दोस्तों अभी आपने सुना हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों फिलहाल आप ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो ओडीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मीना दोस्तों थोड़ी ही देर में लेकर हाजिर रहूंगा आपका मन पसंद फेवरेट कार्यक्रम नए तराना। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: एमबीबीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण, डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828995500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: समेटने की कोशिश करते हैं तो कई तरह की चीजें निकलकर सामने आती हैं। खीरमोन और टिक्कड़ को लेकर आप कई तरह की चीजें यहां पर जिक्र सुन सकते हैं गंगापुर सिटी का, लेकिन जब इसके इतिहास को हम देखते हैं तो कुछ ऐसे राज निकलकर सामने आते हैं जो इसे ऐतिहासिक बनाते हैं। आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो लगभग 285 साल का पुराना इसका इतिहास है जो लगता नहीं है। यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरें जमीन में दफन हो चुकी हैं, लेकिन उसी जमीन में दफन ऐतिहासिक धरोहर के इतिहास को खोज कर निकाला, 3 साल की किताब की मेहनत, रिसर्च का समय उससे अलग है, लेकिन 3 साल जो लिखने में वक्त लगा वो साफ आपके सामने है। इस किताब को मैं आपको लिंक भी नीचे डाल दूंगा। बात करते हैं डॉक्टर गोपीनाथ चर्ची जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी व्यस्तता रहती मैं समझता हूँ और नई किताब पर भी आप काम कर रहे हैं। गंगापुर सिटी, क्योंकि आप यहाँ की जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब इसके हम ऊपरी तौर पर देखते हैं तो 2-3 इसकी पहचान निकलती हैं और लोग उतना ही इसको समझते हैं और जानते हैं, यहाँ तक कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, बहुत पुरानी पीढ़ियाँ तो जा चुकी हैं लेकिन वो भी इसको बहुत कम पहचानती हैं। रिसर्च आपने की, क्योंकि लोगों को सबसे पहले क्यूरियोसिटी जो होती है वो थोड़ा एक उनका ह्यूमन का एक नेचर भी होता है। मैंने जब आपकी किताब पढ़ी तो उसमें मुझे एक बहुत संदर्भित एक ये चीज़ लगी जिसमें आपने खुद ने उसको एक्सपीरियंस भी किया। जयपुर में हमने सुना है कि आमेर से सुरंगें जाती हैं और कहां तक जाती हैं। यहां पर धुंधेश्वर एक पर्यटक स्थल है, पहाड़ी इलाका है जहां पर लोग बरसात में जाते हैं, गोठ भी करते हैं। आप जब इसकी खोज कर रहे थे तो यहां से आप एक ऐसी जगह पहुंचे जहां कुएं के अंदर से एक रास्ता जाता है और सीधा धुंधेश्वर तक जाता है, कैसा आपका अनुभव रहा और उसने कैसे आपको और ज्यादा इनकरेज किया कि अभी तो बहुत कुछ है इसके इतिहास में दफन जिसको निकाल कर बाहर लाने की जरूरत है।
2: गंगापुर में मैंने देखा, बड़ा दुर्भाग्य की बात ये थी कि गंगापुर एक लगभग 300 साल पुराना नगर है, ये 300 साल पहले, 285 मान लो, 287
1: मोटा मोटी 300 साल मान लो
2: लगभग, लेकिन यहाँ जितनी भी धरोहरें थी ऐतिहासिक धरोहरें वो सब नष्ट
1: हो चुकी है।
2: ना तो यहाँ के राजनेताओं ने, न यहाँ के पुराने लोगों ने, न यहाँ के प्रशासन ने उनको संभाल कर दिया।
1: जो दरवाजे हुआ करते थे जिनसे पूरा रहता था,
2: ये दो गढ़ है गंगापुर, एक गढ़ कटनियन पर जहाँ पानी की टंकी वाटर वर्क, एक ये नहर पर जहाँ खुशहाल लेक बनाई गई। मैंने किताब लिखना शुरू किया ये 2022 में, तब तक यहाँ एक भवन बना हुआ था इस नहरगढ़ में, पुराना किला, मैंने उसकी फोटो भी ले ली।
1: लोग आने से डरते थे उस वक्त,
2: ये देखो ये फोटो उसी की,
1: इसके कवर पेज पर वही फोटो है
2: जी, देखे लोग, और इसको देखने वाले आज लोग जिंदा है, लेकिन अभी क्या है उसके बाद में एक मंदिर बन गया, इसको नष्ट करके समतल करके
1: जीर्णोद्धार के नाम पे, मेरे ख्याल से धरोहर को उसका उसी का पुनरुद्धार जीर्णोद्धार।
2: मैंने तो कहा था कि दो बिल्डिंग आज ऐसी बची हैं, एक तो ये गढ़ और एक यहाँ राधारी है इसमें पटवा बाजार में
1: जी,
2: वो आज सुरक्षित है, उसकी मरम्मत करा के गंगापुर की उसको पहचान के रूप में विकसित की जाए,
1: विरासत है वो,
2: यहाँ की पीढ़ी देखेगा पहले के भवन हुआ कैसे कर,
1: नहीं उससे उनको गर्व भी महसूस होगा कि हम एक ऐसे यूं ही कोई शहर नहीं है जहाँ हम रहते हैं, इसका एक ऐतिहासिक धरोहर।
2: तो जिस सुरंग की आप बात कर रहे हैं ना साहब,
1: हाँ जी,
2: तो गोपीनाथ जी का मंदिर है यहाँ, ये बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है बालाजी चौक में, यहाँ का प्रसिद्ध स्थान है गोपीनाथ जी का मंदिर। तो ये गंगापुर जयपुर रियासत की जागीर थी, जागीर थी खुशहाली राम हल्दिया जो जयपुर के दीवान थे, जयपुर राजा के दीवान थे, उन्होंने बहुत युद्ध लड़े जयपुर के लिए, उन्होंने जयपुर के लिए नहीं, उनके पूरे वंश ने, कई पीढ़ियों ने अलग अलग राज्यों में वहाँ के राजाओं की सेवा की, बड़े योद्धा पुरुष थे वो, खंडेलवाल समाज से थे वो,
1: ये भी एक अपने आप में,
2: खंडेलवाल महाजन थे
1: वैश्य,
2: हाँ वैश्यों में आमतौर पर जो योद्धा होते नहीं है
1: उनका वणिक का व्यापार
2: व्यापार, लेकिन वो विचित्री थे वो, उनके पिताजी छाजूराम हल्दिया कहते हैं उनकी पीढ़ियों ने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया, और वहाँ जो हल्दी घाटी से वो लोग आए, उनके कपड़े पीले, उनका नाम ही हल्दिया पड़ गया,
1: वहां से उनका नाम हल्दिया
2: ऐसा बताया जाता है
1: जी।
2: कई जगह की जागीर उनको मिली हुई है युद्धों में, अलवर की, ये दिल्ली वगैरह सब जगह, वो लखनऊ तक, उत्तर प्रदेश तक उन्होंने युद्ध किया कई राजाओं के साथ। तो वो यहाँ के दीवान थे जयपुर के, राजा ने खुश होकर गंगापुर की इनको जा दी। उस समय तक गंगापुर नाम का कोई उसी खुशहाली राम यहाँ मतलब यहाँ जंगल था, कोई बस्तियाँ थी नहीं, बियाबान निर्जन जंगल था। और गंगापुर के नाम पर अगर था तो ये केरी जो है गंगापुर का केरी, उसके सामने संतोषी माता मंदिर, संतोषी माता मंदिर के ठीक सामने वो है वो नामनेर, ये गद्दी मुसलमान वो नामनेर, जब आश्चर्य करेंगे गंगापुर से पुराना तो उदय कला गांव
1: वो कला बाद में जुड़ा उदय के साथ।
2: वो कला तो क्या है उदय बस गया और उसमें से गांव निकलकर छोटी उदय हो गया, उसी गांव में बस गए। उदय कला ये गंगापुर से
1: पुराना है।
2: तो ये वहां से पुराना गंगापुर में कोई स्थान था ही नहीं, बस्ती थी नहीं, या कुछ 8-7 मंदिर थे पुराने, उनमें संत महंत रहते थे, पूजा करते, रुक जाते, कीर्तन करते, कुछ दर्शनार्थी कभी कभी कहीं से आ जाया करते। बियाबान जंगल पानी भरा, कीचड़, पेड़ लगे हुए। तो जब यहाँ जागीर मिली, और आप आश्चर्य करेंगे वो सबसे पहले निवासी तो गद्दी है यहाँ, जो गंगापुर नहीं था नामनेर था, और उसके बाद में यहाँ गुजर आखिर थे, कचारिया वंश के गुजर हैं। वो कहाँ से आए, वो ब्याला के पास एक सीती गांव है, बहुत प्रसिद्ध गांव है, देव स्थान है वहाँ गुजरों का। वहाँ से वो बल्लू नाम के गुजर थे, बल्लू बाबा, बल्लू पटेल, वो अपने 8 बेटों को साथ लेकर के वहाँ से चले। वो उनका काम गाय वगैरह चलाने का पशुपालन था, चलते चलते वो सपोटरा में भरतूर गए, कचकड़ में रुके, वहाँ भी उन्होंने युद्ध बुद्ध भी किया उन लोगों के लिए। वो वहाँ से चलकर फिर गंगापुर में आए, और गंगापुर में कल्याण जी मंदिर के सामने जो एक किला है जहाँ रेटक झूले, वो किला है ऊंचा स्थान है, वहाँ जाकर उन्होंने डेरे डाल दिए, ऊंचा टीला था वहाँ बस गए। क्योंकि पहले के लोग आपने देखा पुराने लोग किलों पर बसते थे, ऊंचाई पर
1: सुरक्षित रहने के लिए, अपने आप
2: हिंसक पशुओं से डाकुओं से दूर से दिख जाए।
1: और जो ऊंचाई पे होता है काफी ज्यादा युद्ध में, तो जो ऊंचाई पर होता है वो प्लस में रहता है,
2: प्लस में रहता है
1: जी।
2: तो वो वहां बसे, तो वो उससे पहले खुशहाली राम से पहले यहाँ गुजर आ गए थे 10 वर्ष। उसके बाद में खुशहाली राम हल्दिया को जब जागीर मिली तो उन्होंने गंगापुर को बसावट का काम
1: शुरू किया,
2: और सबसे पहले तो उन्होंने जो ट्रक यूनियन है वहाँ एक गढ़ बनाया, और वो गढ़ में महल बनाया अपने रहने का
1: जी।
2: और जब यहाँ 1967 में वाटर वर्क्स बना, पानी की टंकी बनी, तो वही बनी, तो उसकी जब खुदाई हुई ना, उसके नीचे से मकान निकले, भवन निकले, क्योंकि जयपुर में जो जैसी पक्के किलों के भवन है और सफेद आयरिश की हुई है काली पट्टी की, वो सब अंदर से निकली। उस समय के देखने वाले हमने भी देखा उसको, तो वहां वो निकली, तो वो तो उनका महल था रहने का। उसके बगल में गंगा जी का मंदिर, उन्होंने उनकी गंगा देवी इष्ट है, इनकी जो है ना खुशहाली राम जी परिवार, हल्दिया परिवार गंगा का मंदिर उन्होंने बनाया, वो वहीं बना हुआ, पीछे से दरवाजा उनके लिए था, आगे से आम पब्लिक, आज भी वो मंदिर है। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि उनके फिर एक किला उन्होंने यहाँ बना लिया नहर पर, ये उन्होंने कचहरी बनाई प्रशासन चलाने के लिए, वहाँ रहवास था, यहाँ जो नहरगढ़ है जिसको खुशहालगढ़ कहते हैं, ये खुशहालगढ़ यही था
1: असल
2: जो इन्होंने यहाँ कचहरी और प्रशासन चला कर यहाँ पर, वो सब नष्ट हो गया, वो नष्ट हो गया पंडित सिंह की मंदिर। तो बाद में उनके दिमाग में आया कि किला बनाया जाए, एक किला यहाँ बनाया जाए, मेरे को तो यहाँ लंबा रहना है। तो गोपीनाथ जी का मंदिर जो है वो एक्चुअली में किला बना रहे थे, और आपने देखा हो तो बहुत लंबाई है उसकी और चौड़ाई भी है, उसमें 3 चौक है और आगे बड़ी ऊंची विशाल सीढ़ियाँ थी, लंबी चौड़ी थी काफ़ी, कम से कम 15 फुट लंबाई थी सीढ़ियों की, और ऊपर और फिर 3 चौक की हवेली थी, हवेली का वो किला था, आगे बहुत बड़े बड़े चबूतरे थे, तो और बुर्ज बनाई थी, उसमें बुर्ज हमने देखी। तो किसी ने, अब उसमें वर्षों लगे बनने में, तो किसी ने जयपुर राजा को जाकर शिकायत कर दी, उसको कहते हैं चुगली खाना।
1: मैं उसी पर आने वाला था, क्योंकि उसके बाद झांझरों वाला और वो जो एक हिस्सा आता है कि उन्होंने ये कहे, ये मेरे ख्याल से जो मैंने पढ़ा वो ये, उन्होंने ये कहा कि वो तो अपना एक साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं, आपने तो उनको जागीर दी थी देखरेख के लिए, लेकिन वो अपना साम्राज्य करो, वहां से फिर सेना भी रवाना हो गई थी जी।
2: तो किसी शिकायत की कि आपकी जिसको आपने जागीर दी वो तो वहाँ किला बना रहा है, और किला बनने का मतलब अपनी नई रियासत खड़ा,
1: नई रियासत खड़ी करना,
2: उस रियासत को चैलेंज करना, चुनौती देना। तो राजा को लगा मेरी रियासत में एक और रियासत संभव नहीं, उनको क्रोध आ गया, और शक्तिशाली तो होती थी क्रोध, स्वाभाविक सी बात है अपने स्वाभिमान केस आए को चुनौती खड़ी करे। तो वहां से उन्होंने नागाओं की सेना दी, नागा उस समय योद्धा हुआ करते थे, मेरी किताब में नागाओं को युद्ध की फोटो भी दिया। वो वहां से चले, उनके पास ढाल तलवार बरछे तोप भी चलिए, तोप भी लेकर चले थे। वो जब पिपलाई पर आ गए, पिपलाई यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, उस समय तो सड़क वड़क नहीं थी, ज्यादा कम होगा स्पीड में, 15-18 होगा। तो वहाँ से उन्होंने तोप के गोले फेंकने शुरू किए, आते आते तोप के गोले यहाँ मंदिर पर पड़े, जो किला वहाँ पड़े, और एक और स्थान में जहाँ उसका नाम बताऊंगा बाद में। जब तोप के गोले सेना नजदीक आ गए, तब ये जो जागीरदार थे घबराए कि क्या हुआ, सेना क्यों आई, मैंने क्या, उनको पता लगा कि ये मैं किला बना रहा हूँ, उसको चुनौती दे रहे हो, आप बना क्यों रहे हो। अपने बचने के लिए उन्होंने बुद्धिमानी से क्या काम किया, मूर्ति मोहल्ला है पास में, वहाँ मूर्तियों का काम होता था, मूर्ति बनती थी, मूर्तियों पर श्रृंगार करके उन पर कलर भर के
1: शिल्प का काम
2: शिल्प का काम होता था, वो यहाँ से बाहर भेजी जाती थी, वहाँ से गोपीनाथ जी की मूर्ति उन्होंने भगवान की ले ली, और आनन फानन में सिंहासन बना करके, क्योंकि आने में टाइम तो लगता ही है, तो उन्होंने गोपीनाथ जी का विग्रह स्थापित कर दिया, और वो गोपीनाथ जी का मंदिर नाम से हो गया। सेना जब यहाँ आई तो उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से, खुशाली राम जी ने, उनके पास वो नहीं थी वो झालर वगैरह उस जमाने में,
1: हाँ, क्योंकि वो तो नया ही मंदिर बना
2: था, मार्केट नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि कांसे की थाली और चम्मच से टन टन आरती करना शुरू कर दिया,
1: आरती जिस तरह से
2: टन टन टन टन स्कूल की घंटी बजती है ना उस तरह से, जब वो आवाज पहुंची यहाँ, जब सेना आ गई, आवाज कहेगी कि ये तो मंदिर में आरती हो रही है, जाकर देखा तो मंदिर, मैंने कहा ये तो किले की सुनी थी हमने, तो ये तो मंदिर बनाया इन्होंने, लगा था हमने तो मंदिर बनाया, किला ही, लेकिन उस युद्ध में फिर बाद वो गोपीनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया, वो किला जैसा बना ले किले के रूप में ही होने को कहा, लेकिन वो मंदिर रह गए गोपीनाथ जी का मंदिर, और वहाँ पुजारी मथुरा से लाकर 24 पुजारी है, वो इन्होंने रखवाया और पूजा करते हैं। उसमें जो सुरंग की बात आपने कही, अब वो किला बनवाए थे, इसका प्रमाण है सुरंग, तो किले सुरंग अक्सर मिला करती है,
1: क्योंकि ये जो जमीन में चीजें दफी हुई, जो ऐतिहासिक इबारतें हैं, और इबारतें तो क्या कहूँ उनको, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, यही इस बात को साबित करते हैं कि ये सिर्फ कपोल कल्पित बातें नहीं है, इनके प्रमाण मौजूद
2: हैं। नहीं, आज उसकी बनावट देखो ना, उस मंदिर की जिसको किला बना, वो किले नुमा प्राचीर बड़ी चौड़ी चौड़ी है, कंगूरे हैं, बुर्ज है, अब उस सुरंग किलों में ही बनती है, महलों में, क्योंकि कई बार ऐसी आपात स्थिति आ जाती है जो राजाओं को वहां से निकलना पड़ता है, उसके लिए गोपनीय सुरंग बनाया करते थे,
1: इमरजेंसी एग्जिट,
2: तो मैं सुरंग में गया हूँ उसमें बचपन,
1: हाँ, मैंने पढ़ा था किताब,
2: बहुत लोग उस समय के जो अंदर गए हैं सुरंग, हाँ। हम अंदर जाते थे, सकड़ी से एक सीढ़ी थी, सीढ़ी में नीचे पहुंचते तो वहां एक शिवलिंग था, और उसके अंदर बहुत गहरा कुआ था, क्योंकि पानी वहीं से जब बनाया किला तो पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पानी हमने कुआ देखा, सकड़ा कुआ था, ऊपर से खींचते थे, हम एक मंजिल नीचे तक जाते थे, बाद में खूब अंधेरा हो जाता, हाँ। उसमें चमगादड़ उड़ती थी, हमको डर लगता,
1: और लाइट का नेचुरल सोर्स नहीं है, तो इस
2: समय उसको शायद मशालों की व्यवस्था रखते होंगे, और उसमें वो सुरंग थी, सीढ़ियां थी, हम गए उसमें एक खंड तक, बाद में जब मैंने खोज की गंगापुर में घूमा, ऐसे में गंगापुर का ही ऊपर इतिहास को खोजने की दृष्टि से वो अलग दृष्टि होती है, उसको लेकर मैं चला, तो फिर खोजी दृष्टि कहते हैं, वहां तक मैं गया तो पता लगा कि जब 1965 में यहाँ बिजली आई तो खंभे गड़े, चौपड़ पर जब खंभा गाड़ने लगे तो नीचे शिलाएं निकली, खंभा नीचे गाड़ा ना
1: जी,
2: नीचे शिलाएं चट्टानें निकली, और वो सुरंग के पत्थर थे एक्चुअली,
1: इतना नीचे सुरंग थी,
2: हाँ, ये देखने वालों ने बताया कि यहाँ सुरंग के पत्थर निकले साहब, अभी भी मौजूद है, तो वो जो सुरंग चली गोपीनाथ जी के मंदिर से, जो अभी जो बाजार है गोपीनाथ जी के पास, जो बाजार है उस बाजार से चली है, और पसारी गली
1: आगे जाके,
2: पसारी गली चूड़ी गेट, और चूड़ी गेट से वो जाकर के, और ये कोली पाड़े से होकर के, और वो धुंधेश्वर
1: वहां जाकर निकलती है,
2: धुंधेश्वर में जाकर के एक गुफा है, वहां जाकर निकलती है, अगर उसकी खोजी जाए तो निश्चित रूप से वह सुरंग निकलेगी। मेरे पास जितने सीमित साधन थे, मेरे शरीर था, मेरे पास कोई कैमरा नहीं, कोई विज्ञान के इंस्ट्रूमेंट नहीं, वैज्ञानिक जितना मैं कर सका उतना किया है, आने वाले समय में मॉडर्न लड़के या अच्छे पढ़े लिखे लड़के इसकी खोज करें तो निश्चित रूप से बहुत कठिन।
1: आपने सही कहा था कि पुरातत्व विभाग के जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए ये बिल्कुल ऐसा एक जिसको हम कहते हैं कि वर्जिन प्लेस है, जिसको अभी तक खोजा नहीं गया है, उनके लिए रिसर्च का एक नया टॉपिक भी हो जाएगा, और साथ ही हमारा जो गंगापुर का इतिहास जो जमीन के नीचे दबा पड़ा है वो प्रामाणिकता के साथ बाहर भी आएगा। मैं भी देखिए तो कोशिश करेंगे हमारे इस वीडियो के जरिए सरकार तक ये बात पहुंचे, पुरातत्व विभाग तक ये बात पहुंचे, और साथ ही पर्यटन विभाग तक भी ये बात पहुंचे, क्योंकि जब हम पर्यटन के लिए जब सर्किट बनाते हैं लोगों के घूमने के लिए, उसमें अगर हम सवाई माधोपुर जाने वाले जो लोग हैं वो गंगापुर सिटी होते हुए इन जगहों को धुंधेश्वर को सब जानते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर इनको संरक्षित करके वापस इनको पुनरुद्धार करते हुए इनको सुरक्षित कर लिया जाए, मुझे लगता है कि ये पर्यटन के लिहाज से भी अच्छा होगा और गंगापुर सिटी के इतिहास को और समृद्ध लोगों तक पहुंचाने के लिए भी एक बहुत अच्छी कोशिश हो सकती है।
3: 89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस,
4: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6, शहर की धुन।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

दोस्तों फिलहाल आप ट्यून कर रहे हैं T9.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के साथ। अभी आपने सुना नए तराने कार्यक्रम। दोस्तों थोड़ी देर में लेकर हाजिर रहूंगा आपका मनपसंद कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: दोस्तों वक्त हो चुका है 3 बज चुके। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे फलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ। सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक, 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में
3: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावत और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
4: गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है, 4 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक। 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में
3: दोस्तों, वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरी साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों, कार्यक्रम की पहली फरमाइश लेके आ रही हूँ। दोस्तों, कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आई है सवाई माधेपुर से। सवाई माधेपुर से हमें कॉल किया है मोनिका मीणा जी ने। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: आपका?
1: जी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं? काफी लेट रिकॉर्डिंग हो रही है।
0: सर मैं ठीक हूँ सर, कॉलिंग का टाइम यही है 4 बजे खोले करेंगे।
1: जी दीदी।
0: हाँ जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर आज?
1: उदित नारायण की आवाज में सामने भी खूब है साथ महबूब है, बहुत ही सुंदर गाना है, आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ रेडियो डीएस गंगापुर से।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद, आपका दिन मंगलवार हो। नमस्कार।
0: वेलकम सर।

0: सर नाम क्या है?
1: प्रोग्राम बदल दिया है क्या?
0: नहीं सर, प्रोग्राम नहीं बदला, 4 बजे का टाइम कर दिया कॉलिंग का।
1: ओहो, तो मतलब अनाउंस तो कर दिया करो ना, हम तो 3:30 बजे के लग रहे हैं, फोन मिला हमें।
0: सर बताइए गाना कौन सा सुनना चाहोगे?
1: इस भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो नमस्ते
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: चौधरी निवेदन कर रहा हूँ आगे जी से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाना बढ़िया लाए
1: कौन सा सर बताइए।
0: टाइप करो मैं रात और न सोई।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका सर?
0: मेरा नाम है राज सिंघानिया।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: बॉम्बे से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: ये क्या है कि मुकेश सिंगर नाम का है, हरियाणवी सॉन्ग है वो, राजस्थानी सॉन्ग है।
1: हाँ जी।
0: जो डाकिया गाना लगाना है।
1: गाने के बोल बता दो सर, हरियाणवी में बहुत गाने हैं सर।
0: डांकिया मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन डांकिया के काफी भी है, एक सॉन्ग है
1: डांकिया की।
0: हाँ,
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो अपने कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: संचल।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुना?

0: गौरी शंकर मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: सिंधु मूस वाले का 295।
1: ओके सर, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मोनिका।
2: मोनिका जी, कहाँ से बात कर रहे हो?
1: रेलवे कॉलोनी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: ओ मखणा वे, साजन फिल्म का।
2: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
3: ईट 9.6 पे रे

0: कॉन्फ्रेंस के बहाने खूबसूरत बीवी को घर पे छोड़कर आया हूँ।
1: इस न्यू ईयर की पार्टी में कुछ खास इंतजाम किया है क्या? नहीं,
2: ऐसा इंतजाम किया है कि आप दोनों का दिल खुश हो जाएगा।

0: राम बोल रहा हूँ।
1: कहाँ से बात कर रहे सर?
0: राम बदर क्या से बोल रहा हूँ
2: सर। कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: कितना बदल गया इंसान देख तेरे संसार की।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: फिल्म का।
1: ओके मैम। हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो?
2: हेलो
3: हेलो,
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: गुलशन।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: गंगापुर सिटी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: कति लंबे राखे बाढ़ कति कति राखे डाडी है, न्यू सॉन्ग।

0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी सर। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: अनिल शर्मा।
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: नागपुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: फीलिंग सॉन्ग।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परिणाम

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो?
1: रेलवे स्टेशन।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: मेहंदी तो रंग लाती है।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
1: थैंक यू।

0: हाँ जी,
1: हाँ जी,
0: नमस्कार जी।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: मुरलीलाल शर्मा है मेरा नाम। बनाम मैडम,
1: कहाँ से बात?
0: गंगापुर से बोल रहा हूँ।
1: कौन सा गाना?
0: सरक पिक्चर का गाना है ये, मैं राजा बिंतरी जिंदगी के लिए।
1: का गाना रहता है बस, ये तो पूरा ही गाना चलता है पूरे ही।
0: ठीक है मैडम।
2: बच्चे के परदादा का नाम बताइए।
3: लाला कैलाश नाथ मल्होत्रा।
2: अथ कैलाश नाथ मल्होत्रा पर पौत्र आगमनम सर्व कुटुम्ब कल्याण प्राप्त रस्तु। बच्चे के दादा का नाम?
3: रंजीत कुमार मल्होत्रा।
2: रंजीत कुमार मल्होत्रा पौत्र सर्व

दोस्तों, वक्त हो चुका है 5:12 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
4: 89.6 पे
5: रेट में गंवाना नहीं है। और अगर आपके घर में थोड़ा सा तिल का तेल है ना, तो अपने घुटनों पे, अपने बालों में, अपने सर पे आप तिल का तेल लगाकर बैठ सकते हैं। इससे जिस भी प्रकार के दर्द आपको होते हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी कि अगर घुटनों में दर्द रहता है या कोई घर में बड़े बूढ़े हैं या खेलते वक्त कोई इंजरी हो गई है तो भी तिल का तेल आपके बहुत काम आएगा। तो तिल का तेल इस्तेमाल करें और धूप में जरूर बैठें। केवल सर्दियों सर्दियों में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है ना, सब ठीक हो जाएगी। लौट के आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी,
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं चीजों को लेकर। मैं हूँ आरजे खुशी और मुझे ऐसा लगता है जब भी हमको मौका मिले ना छोटे बच्चों के साथ में खेलने का, उसको गंवाना नहीं चाहिए। देखिए, हम सबके अंदर एक छोटा सा बच्चा है जो खुल के जीना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी के बोझ तले हम बहुत ज्यादा सोचने लगे हैं और केवल सोचा विचार ही करते करते हम लोग जीना भूल गए हैं। तो जब भी मौका लगे अपने आसपास वाले बच्चों के साथ में जरूर खेलें। ये आपको अंदर से बहुत यंग फील कराएगा, यानी कि आप अपने अंदर के बच्चे से मिल पाएंगे। ये आपको खुशी भी देगा और जब आप मन से खुश होंगे ना तो ये आप बाहर का काम बहुत अच्छे से कर सकेंगे। आजमा कर देखिए। मिलूंगी कल इसी पते पर इसी समय। मैं हूँ आरजे खुशी।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सुप्रभात, नए दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 89.6 डीएस एफएम पे। मैं तनीषा आपके साथ। चलिए आज आपके दिन की शुरुआत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक बात के साथ करती हूँ। वो कहते हैं कि इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। उनका कहना था कि व्यक्ति को सपने देखने चाहिए, कुछ नया करने की उमंग हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगर हम सपने नहीं देखेंगे तो जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो सपने पूरे करने के लिए सपने जरूर देखना। ऐसी ही उनकी कुछ बात के साथ आपसे मिलूंगी 89.6 DSFM पे। मैं तनीषा।
2: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बड़ी अच्छी बात कही है जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय हो तुम। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। ऐसी बातों के साथ 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हमारी आदत होती है ना कि हम गलतियों को पकड़ के बैठ जाते हैं, भूल नहीं पाते हैं। मन में 100 चीजें चलती रहती है, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। पर इंसान से ही तो गलती होती है ना। जब भी ऐसा लगे तो ये चीज सोचना कि अगर वो इंसान ही नहीं रहा तो गलतियों का क्या करोगे, अफसोस होगा क्या नाराज रहने का। देखना, जवाब हाँ ही आएगा। तो अगर दिल से जवाब हाँ आए तो माफ कर देना। कभी कभी लेट गो करना, चीजों को जाने देना बेहतर होता है। ऐसी ही मोटिवेशनल बातों के साथ आपसे फिर मिलूंगी 89.6 DSFM पे। मैं तनीषा।
2: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
4: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएसआई एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: के बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
3: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSI अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
4: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएसआई एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: DS कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, IAS या RAS, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ। सीमित सीटें, पहले आए पहले पाएं।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
1: हेरा रे रा, हेरा रे रा।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
1: हेरा रे रा, हेरा रे रा।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
1: हेरा रे रा, हेरा रे रा।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSI अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSI।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएसआई अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
1: हेरा रे रा, हेरा रे रा।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
1: हेरा रे रा, हेरा रे रा।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSS।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
1: हेरा रे राम, हेरा रे राम।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

हेलो दोस्तों, आपने टुन के 89.6 रेडियो टेस गंगापुर से डे तड़का में आपका रेडियो दोस्त आकाश और अब करते हैं कार्यक्रम का समापन और मिलते हैं सुबह प्रातः 5:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, शुभ रात्रि।